ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक्टल से दिल तक शो चली छी संध्या सर ज्योति छी आज इवनिंग रे आपन को सहित पर्वतीय समष्टि करिछंती आभास सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा अलीचा उपा तमन्ना रेड्डी टाटा स्टील प्लांट रो लिखिछंती उपा देवस्नान पूर्णिमा रा शुभेच्छा शुभकामना समस्तंकु एवं लेखिछंती आजिरो प्रोग्राम बहुत भल लागुची आपनकर उपस्थापना बहुत भल अछि धन्यवाद आपनकर अप्रिसिएशन पे आपन हमर कार्यक्रम सुनुछंती बहुत भल लागुची बोली कहउछंती बहुत बहुत धन्यवाद एवं लेखिछंती आजि रश्मि रंजन कर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सेति पे बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना जणई देबे आमो तरफ रु मध्य रश्मि रंजन को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपणकर दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय हो सबबेले खुशी रे रहंतु एकाठी रहंतु एवं परे लिखिछंती दुनिया पाई पदे वक्त बदलता है जिंदगी के साथ जिंदगी बदलता है वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ सेसरे टुना भाई रमेश भाई उर्मिला अपा मुन्ना भाई विजय भाई चांद भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग जणैछंती एवं एफएम रेनबो समस्त उपस्थापक उपस्थापिका को मध्य जणैछंती वेरी वेरी गुड इवनिंग थैंक यू सो मच आपणकर ई सुंदर एसएमएस पाई आ गोटे एसएमएस हम पाखे आसी पहुंची जाइछी एसएमएस करिछंती आलोक चंद्रा जेना चाहिलो कटक्रु गुड सुंदर एसएमएस लिखिछंती ज्योति मैडम गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग लिखिछंती मणिषर मन भितर परिष्कार रहिबा दरकार सुंदरता सबुबेले कामरे आसिना थाए किंतु मन भितरे जदि आमर स्वच्छता थिबो मन जदि पवित्र थिबो ता हम पई आशीर्वाद पालटि जाय सबुबेले रूप जे आम पई कामरे आसिबो ता नहि एकदम ठीक कथा लिखिछंती सुंदर चेहरा जेते जरूरी नुहे सुंदर मन हबा सेते जरूरी बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर एई एसएमएस पई तबे परवर्ती एसएमएस हमकु करिछंती राजेंद्र नाना नुवा गांरु लिखिछंती प्रभु श्री जगन्नाथंकु प्रणाम करूछि आपणकु आशीर्वाद प्रदान करंतु एवं सबु श्रोता मानंक पई मध्य प्रार्थना करिछंती समस्त सुस्थ एवं निरामय रहंतु बोली बहुत बहुत धन्यवाद राजेन्द्र नना नुआगाँ करिथिले एसएमएस समस्त सुस्थ जीवन जापन प्रार्थना करिछंती प्रभु पाखरे बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी हेथिबारु तबे आपण मध्य चाहिले एसएमएस करि परिबे नंबर ती होउछि 09495963210 एवं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर होउछि 88952542200

0: ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜର ସେବକ ହୁଅ। କାହାରି ଉପରେ କେବେଲେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବିଶାଲ ଶର୍ମା। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16

0: इनमें पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतार कार्यक्रम अर्घ्य थाली।

प्रभु तुम बिना मोर नाही के आन तुम्हें ही मोर दिन तुम्हें ही मोर भजन तुम्हें ही मोर बंधन तुम्हें ही ए मनर सब अभिमान कारण आउ तुम्हें ही

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक एवं आसतु शुणा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 82तम भाग बेतार संपादना डॉक्टर वैष्णव चरण सामल संगीत परिचालना ओम प्रकाश महांती वर्णना संजय कुमार शतपथी प्रयोजना सुहास महांती अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 82तम भाग।

यज्ञ बराह हिरण्याक्षकु संहार करे देवतामानंकर संकट दूर करिबाकु कहन्ते। हिरण्याक्ष कोप करि प्रभुंकु गदा प्रहार कला, माया बळरे ताकु से सहि नेले। से युद्ध भयंकर रूप धारण कला, शेषरे प्रबल वायु प्रवाहरे वृक्ष जेपरि भूईरे उपुड़ी पड़े सेपरि घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़िला।

वेलकम बैक टू इनकर्शन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आओ अच्छे अपन कर म्यूजिकल हम सफर आपन का सहित मॉर्निंग अपडेट को आपन मन को पाखरे पहुंचे पाई आज कौन अच्छी खास आज कौन अच्छी स्पेशल आज दिन रो कौन रही छी महत्व ए सब को नहीं की आपन मन को पाई आज रो मॉर्निंग अपडेट को स्टार्ट करू छी विथ द वेदर रिपोर्ट आपन माने जानी थिबे वर्तमान सकाळ सकाळ आपनकर घर बाहर को बाहर मात्र के जो भिजा भिजा माटी भिजा भिजा आकाश सब किछि भिजा भिजा माने ए जो वर्षार ऋतु आरंभ हो सारी वर्षार प्रकोप धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़िवार लगी आज मध्य अनेक स्थान में वर्तमान हालकर मध्यम धरण वर्षा जारी रही आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुमान अनुजाई आसंता 24 घंटा मध्य अनेक स्थान में राज्य में अधिकांश स्थान में मेघुआ पाग रहा सहित मध्यम प्रबल अति प्रबल बेगर वर्षा होवार संभावना रही उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार केतेक जिले में प्रबल प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही तापमात्रा प्रायतः 30 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस रहा गरम निश्चित भाव आश्वस्त दब ए आपणकु थंडा थंडा पागरे आज दिन सारा बीते सुजोग मिलिबो किंतु जदि आपण माने घरु बाहरु चंदी तबे निश्चित भाबरे कैरी करंतु टिके छता रेनकोट रो व्यवहार निहाति करंतु कारण सीजन रे चेंज टाइम रे अनेक समय रे आमे देखिबा को पाउ जे अनेक जगह रे थंडा काश जनित रोग मध्य हेथाय वायरल जनित रोग हेथाय सेति पय आपण मनकु समस्त को टिके सचेतन रहबा को पडिबो आज सारा भारत पालन करिबो जातीय डाक्तर दिवस आम जीवन बंचौथिबा सही व्यक्ति विशेष माने जो मानंकर त्याग एवं सेवा को सम्मान जणिबा पई आज सारा देश पालन करूछि जातीय डाक्तर दिवस देशर विशिष्ट चिकित्सक तथा पश्चिमबंग द्वितीय मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉयंकर जन्म एवं मृत्युवार्षिकी स्मृति रे आज दिवस को पालन करूछि सारा भारत जातीय डाक्तर दिवस भावरे आज मध्य चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस एवं आज ठारु मध्य आरंभ होउछि सारा देश रे गच्छ लगेबार महापर्व बनम।

0: राज्यस्य अन्तर्गतं उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: आपण मने ट्यून करिसेंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।

वेलकम बैक अगेन टू इनकरिजन द 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक म्यूजिकल हम सफर बिस्वजीत छ अपन मान के संगरे सुबह सकाळ रो सिलसिला स्टार्ट हे सारी छ अपन मान को कहतली जे गछ लगेबार कथा आज होची वन महोत्सव रो फर्स्ट डे किंतु ता सहित आज सारा देश पालन करुछ आ गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण दिन आम समस्त जीवन रे जहां रही गोटे बहुत बड़ अवदान आम समाज रे आमे मैंने सुस्थ रहा आमे मैंने केमती भल चलिबा भल स्वास्थ्यवान भाव निजर दैनन्दिन कार्यक्रम कर समस्त रोग वैरागुरु केमती आमे मैंने मुक्त रही एथिप्रति जो मान सबुठारु बड़ अवदान थाए से समर्पित आज दिन जो मानक अनेक समय इमोशनल होकर आमे मैंने कहू द्वितीय भगवान बोली सतरे निश्चित भाव से जनकर जीवन को बंचाई दे पारंती एवं जनकर जीवन को सुंदर सरस करने अनेक उपदेश अनेक अवदान ठीक गेस कर आज आम देश पालन करातीय चिकित्सक दिवस बा नेशनल डॉक्टर्स डे आज जुलाई एक तारीख आज दिन की उत्सर्गीकृत जो मैंने निजर सुख शांति को पछरे पकई दिन राति एक कर दिखती गोटे रोगी गोटे पेसेंट रहा गोटे तार सेवाई देशर महान चिकित्सक तथा पश्चिम बंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय स्मृति में आज दिवस को भारत पालन कर डाक्तर दिवस भाव जदि आपण टिके पछकु नेइजिबि तबे आपण माने मन पकांतु कोरोना समय रे से महामारी रो कथा एवं से समय रो परिस्थिति विषय रे जेतेबेले अहरह 24 घंटा अनेक किड्स को पिंधी दिन राति एकाकार करे सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष रे अहरह परिश्रम करथले एवं आम मानकु सेवा जगाई दउथले से डाक्टर माने निज जीवन को बाजीर लगे जो मैंने आमर प्रत्येक गोटे गोटे जीवन करुले अनेक संघर्ष से डाक्तर माने नीतिदिन अनेक हॉस्पिटल अनेक जगार आम मान स्वास्थ्य अनेक कथा को बुझुचंती आम पाई अनेक सुस्थ सबल रहिबार पंथा को ग्रहण करिबार उपदेश आमको दौंती ए आकाशवाणी आपने से डॉक्टर मानकर उपदेश शुणुंटी आज सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम सबुदिन सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुणुंटी स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने डाक्तर माने आम जीवन ने जड़े जड़े एमती गुरुत्वपूर्ण मनीष जहां को आम निश्चित भाव में केवे लोड़ू किंतु समय परिवर्तन रे वर्तमान कौन होची ना अनेक जगह देखा पाऊ प्रति आम व्यवहार एवं किछिटा जगह यार व्यतिक्रम देखा मिलू से आम मैंने समस्ते सचेतन हवा निहाती आवश्यक सेवा को कर्तव्य निष्ठापरता को एवं सेमानकर समर्पण को आम सबुबले सम्मान दबा उचित एवं सेइथि आज दिवस को पालन जातीय चिकित्सक दिवस भाव निश्चय भाव जदि आपणकर सराउंडिंग रे मध्य अछंती केही जने डॉक्टर एवं आपणकर प्रियजन जदि डॉक्टर निश्चित भाव तांको आज विश करबा पई भूलिबेनी तांको आज थैंक यू कहबा पई भूलिबेनी एवं आकाशवाणी एफएम रेनबो परिवार तरफ रु आमको सुनुथबा प्रत्येक डॉक्टर्स मानंकु प्रत्येक चिकित्सक मानंकु जो माने आम पई जाग्रत प्रहरी भाव अहरह परिश्रम करुछंती से मानंकु बिग सैल्यूट एवं बहुत बड़ा थैंक यू सहित विश करछु हैप्पी डॉक्टर्स डे।

0: सावन झूम रहा है और हम उनको याद भी कर रहे हैं। सतरे संगीता कारमाने के पहले भी ए दुनिया रु जानती से अमर सब बड़े स्वर तर गायन आम समस्त हृदय जो पहुंचे लगे सत बड़े कलाकार टी के मरेनि। ये सुंदर गीत सहित वर्तमान समय है स्टूडियो घंटे इशारा देखिए समय कला बाजवाई जाऊँ सका आठटा आसतु परवर्त कार्यक्रम लेकर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली।
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा।

0: ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है।

0: दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Jiramji Act 2025 will come into force across rural India

0: వెల్కమ్ బ్యాక్ ట్యూన్ కర్చుంది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్కు అవకొచ్చుంది తెలుసే దిల్ తక్.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है. ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है. लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं. यह आंदोलन अब स्वच्छता

से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: हेलो मोपसंदा।
1: हेलो जी बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया।
0: सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, कैसे हैं आप?
1: जी आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और हमें उम्मीद है कि हमारा आकाशवाणी कटक परिवार भी अच्छी तरीके से होगा।
0: सब अच्छे हैं। आपसे तो हम पहले भी बात किए थे, फिर भी सारे श्रोताओं को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं काम।
1: जी आपको याद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे बात हुई थी, आपने इतने अच्छी तरीके से बात किया था, तो याद कैसे नहीं रहेगा?
1: सर ये तो है, हमारा काम किराने की दुकानदारी का है।
2: अभी भी आप किराने की दुकान में बैठे हैं शायद?
1: हाँ बिल्कुल बैठे हैं।
2: आप वहाँ पे जो आवाज निकाल रहे हैं ना, खड़खड़ धड़धड़ का, वो आपके किराने दुकान का आवाज ही है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
2: अभी क्या ग्राहक नहीं है?
1: ग्राहक को ही सौदा दे रहे हैं,
0: इसी वजह से आवाज हो रहा है।
2: दोनों बातें एक साथ चल रही है।
1: हाँ इसीलिए तो आपसे थोड़ा हल्का सा व्यवधान हुआ हो बात करने में।
0: फिर भी आप इतने काम में व्यस्त होके भी हमको याद किए, इसीलिए धन्यवाद। घर में आपका कौन कौन है?
1: घर

0: मैं एक जो सरकारी नारा है ना, हम दो हमारे दो।
1: अच्छा आपने पूरी तरह से सरकारी नारे को सार्थक किया है। नहीं
0: हाँ,
2: आपके दो बच्चे बेटा है या बेटी है या
0: दोनों ही बेटे बेटे आए हैं और अच्छा। हम सोचते थे कि ऊपर वाले की कृपा से शुरुआती दो जो हमें फल मिलेंगे ऊपर वाली कृपा से जैसे भी होंगे उनको मैं स्वीकार करूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपकी बेटियों का नाम क्या है?
0: बड़े का नाम आदर्श है, छोटे का सार्थक।
2: आदर्श सार्थक।
0: हम पांच भाई हैं, सभी मिला के पांच भाइयों के किसी पे दो किसी पे एक, इस तरीके से पांच लड़कियां हमारे हैं।
1: अच्छा।
0: तो उनको भी हम अपनी ही तरह, वो भी बच्चे हैं, वो भी अपने हैं, बच्चियां हैं, वो भी अपनी हैं, हमारी हैं तो उनकी हैं। हमारे परिवार में ये सामंजस्य है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: मतलब अगर हमारे अपने पिताजी की फैमिली का है तो हम पांच भाई और तीन बहनें।
2: सब लोग साथ में रहते हैं या अलग अलग जगह में रहते हैं?
0: सब लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन हाँ। उसमें एक मजे की बात यह है कि दो भाई एक साथ रहते हैं, रहते अलग अलग हैं लेकिन एक साथ से मतलब है वो एक ही जगह आगरा में रहते हैं।
1: अच्छा।
0: हम अपने घर पे रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, खाना पीना अलग अलग है लेकिन आपस में ही है एक प्रकार से।
1: मतलब एक शहर में रहते हैं लेकिन अलग अलग
2: अलग अलग।
0: हाँ अलग अलग। एक भाई हमारे जो है वो ग्वालियर में रहते हैं।
1: तो वो सब भाइयाँ क्या करते हैं?
0: वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर पद पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं वर्तमान में।
1: अच्छा।
0: अभी साल ही भर हुई है तभी रिटायर हुए हैं।
1: आपका ये जो किराना की दुकान है ये कब से है?
0: हमारी इस दुकान को 2015 से की थी।
1: उससे पहले क्या करते थे आप?
0: उससे पहले हमारा काम यही था, किसानी का काम था। एक तो भी हम आपको बताएं कि पहले हम गांव में रहते थे, गांव से आके फिर हम अपने जो जालौन जिले का हमारा शहर उरई है यहाँ मैंने पहले दुकान की मोटर पार्ट्स की और मोटर पार्ट्स के बाद फिर दुकान की किराने की। पार्ट्स की दुकान अच्छी रही और किराने की दुकान भी अच्छी चली।
1: बहुत बढ़िया।
2: आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं क्या?
0: हाँ हाँ, जो देखिए जो फरमाइशी कार्यक्रम रहते हैं हमारे, जैसे जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसको हम जरूर सुनेंगे।
2: समझते हैं क्या उड़िया?
0: नहीं नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ।
2: अगर आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं तो ये फोन करने का कोई मतलब ही नहीं।
1: हमारे तो सारे उड़िया के प्रोग्राम है लेकिन आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं।
2: निराश नहीं करेंगे ना हमारे श्रोता को? आप अगर फोन लगाए हैं तो हम बात कर लेते हैं, मगर आप सुनिए हमारा प्रोग्राम, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत तो भाषा भी सीखना चाहिए सबको।
1: हाँ,
0: आपका सुझाव हम अपने अंतरात्मा में उतारते हैं।
1: जी जी, आपके साथ साथ हम उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो उड़ीसा के बाहर से कॉल कर रहे हैं, हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप जिस स्टेशन में बात कर रहे हैं उस स्टेशन की भाषा, मतलब उस ओडिया भाषा या फिर कोई भी जगह का भाषा, उसमें भी थोड़ा नॉलेज रखिए।
0: हाँ, उसके लिए एक यही विकल्प रहेगा कि कोई एक कार्यक्रम ले लें और उसको अविरल सुने।
1: हाँ, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं ओडिया में।
2: थोड़ा बहुत तो ओडिया हमको बोल के सुनाएंगे, चाहे एक सेंटेंस हो।
0: सुनेंगे? आप जासमिन जी और नमिता जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, आप तो नाम भी याद रखे हैं।
2: आपसे तो बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो पसंद से?
0: फिल्म कन्यादान, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर, मोहब्बत इसी को कहते हैं, इस फिल्म का एक गीत है।
1: आपका पसंदीदा गाना हम सुना देते हैं, फोन किए बात किए इसीलिए धन्यवाद।
0: शुक्रिया मैम।

0: वेलकम बैक टू इनकर्जन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो हसर महत्व केते इंटरनेशनल जोक डे रे आज की आपण मानको बहुत हसांती जीवन ने से मानको विषय कथा होचे आसी जाय छे आ गुटे कॉल देखबे की करछन नमस्कार की कोथले कोटु कोथले
1: हसीबारे केबे कृपण हुवली हसीबारे केबे कृपण हुवली हस की आनीछ करज मन खोला हस हसी दियो थरे
0: बंधु हजीज सब दरज नमस्कार कवितार आरंभ कले भाई टे परिचय जान सारे
1: समीर पंडा कहलंगा पिंठ
0: समीर भाई आपको नमस्कार आपको स्वागत डायल इन लाइफ चिटचाट को समीर भाई कौन कह तो कवित सुंदर भाव में कहीदे हसर महत्व आपण जीवन किए सीमती मनीष जी आपन को खुब हसांति एवं जोक फोक कहिके हसांती एवं तांकु देखिला माने आपनको मुहरे हस पड़े आसे
1: निहाती आजिका डेट रे हस आज्ञा निरुदिष्ट
0: आज्ञा
1: तो हस को खोजिबा पई आमे लाफिंग क्लब करूचे हस को कोठी हजीचि ताको सजाडी के आनिबा पई आमे खोजिबा को जाउचे किंतु आमो जीवन रे हसर प्रकृत रे हसर माधुर्य बहुत अछि हसर महत्व बहुत अछि पर्सनली आम कथा मो कथा मु कहिबी
0: आज्ञा
1: मु जेतले उदास थाए मु जेतले माने मन उणा थाए आम घर मो घरणी मते जेन तेल प्रकार मन को हल्का कर दो किंतु ता बादे आमर गोटे

साथी वहारे टिप टिप वर्षा एवं रेनबो एफएम सांगरे आपण माने काटुचंती आपणकर दिल से दिल तक कनेक्शन को आवरी स्ट्रांग करुचंती कारण समय हि जाईची वर्तमान आपण मानकर एसएमएस रा आपणकर व्हाट्सएप मेसेज रा आपण मानकर अनुरोध रा आपण मानकर फरमाइश रा यस वर्तमान स्टार्ट करचू रेनबो एसएमएस रा सिलसिला नंबर होची 09495963210 आमुक एसएमएस करबा पई फोन रो एसएमएस बॉक्स को जानतु टाइप करी दियंतु एफएम आरसी तापर लिखि दियंतु केउ गीत ति सुनबा पई चाहंती को चलचित्र को एल्बम रो संगीत कहा को डेडिकेट करबा पई चाहौचंती से गीत ति एवं पठि दियंतु आमा नंबर 09495963210

0: बमक बम बमक बम बमक
1: तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा

वर्षा विजय नमस्कार, सब स्टाफ मानू नमस्कार, सब श्रोता मान गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल जोक डे डायलिन चिट चैट रे जो टॉपिक टी रखी थे आज एमती को व्यक्ति अच्छा जी आपन को खूब हसाते ये टॉपिक रे कॉल करले समस्ते निज लाइफ व्यक्तिगत कथा एवं व्यक्ति विषय जनइले मजा लगला डायलिन आज सब श्रोता मानक धन्यवाद जो मैंने पार्टिसिपेट करते आपण तो हसी हसी प्रोग्राम करती सब बड़े बहुत बढ़िया लगे से ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आम गोटे जोक लिखिचु आप पढ़ी दिंतु। जड़े व्यक्ति डॉक्टर पाखक गले कहले सार मु वेस्लिन को घी भाभी पटी मारी खाई आपण किसी मेडिसीन दिंतु। यही कथा शुणी डॉक्टर दुईटा आल्प्रिप देले कहले निय व्यक्ति जनक कहले सार याकु नेकी कौन करिबी देन डॉक्टर कहले आखिरे मारिबो एटलिस्ट वेसलिन आउ घी भितरे फरकटा जानी परिबो। हेबे रेनबो एसएमएस रे आपण आमको एही गीतरे निहास्ती सुनाई दियंतु। गीतटी होची छुप गए सारे नजारे ये क्या बात हो गई दो रास्ते रु। सुंदर गीतटी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु शुणी चाहते सुंदर मेसेज टी पठाई हाव ए नाइस डे लिखी रही नमस्कार लिखी निश्चित भाव मान बहुत बहुत धन्यवाद एत सुंदर भाव जोक टी पठाई सुंदर मेसेज लिखी पर गोटे गीतर फरमाइज कर ढीह साई कादुआपड़ा जगत सिंहपुर प्रमोद कुमार साहू शुणा चाहते फिल्म कायामत ब्यूटीफुल ट्रैक गुड़ बैक टू बैक आप स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो आउ कौ था दिल से दिल तक।

मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

हेलो फ्रेंड्स, आज कलाकार सोरे आमे कथा होतले बॉलीवुड तथा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री रो एमिति जने तारका जी राताराती स्टार हिथिले एवं सृष्टि करि परिथिले निजर कोटी कोटी फैंस। आज एबे कथा होतले अरिजीत सिंह के विषय रे। केवल सिंगिंग रे सीमित नथिला तांको टैलेंट एवं से दीर्घ किछि वर्ष धरि म्यूजिक डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर भावरे मध्य खूब जनाशुना। तांको गीत खास करी जुबा पीढ़ी को पाई लोकप्रिय होई परिछि। जणे प्रभावशाली गायक भावरे से निजकु प्रतिष्ठित करि परिछन्ति। तांकर प्रत्येक गीत श्रोतांको हृदय को सीधा सड़ख स्पर्श करि परिछि। एहार कारण से सबु गीत को निजे फील दे अनुभव करि गांति। अनेक इंटरव्यूज रे से एहा भी मत रखिछन्ति कि सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। तेणुकरी तांको सक्सेस रो मंत्र हेउछि कि सबुबेले सिंपल रहिबा सहित निज टैलेंट को केमिति अधिक अधिक बढ़े हेबो ता उपरे काम करिबाकु आवश्यकता रहिछि, निज उपरे काम करिवार आवश्यकता रहिछि। तेणु आज कलाकार रे आमे कथा होथले लेजेंडरी सिंगर अरिजीत सिंह के विषय रे। तेरे साथी समय तो सरीछि किंतु समय सरिबा सहित एवे कलाकार शो को इठी वाइंड अप करबा पई पड़िबो। किंतु आपण को अरिजीत सिंह रो ए शेष गीतरी सुनी दी शेष करबा आजिर शो का।

आपने ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को डीपीओ छे आपनों को सही तो वर्तमान समय 11 बजे 30 मिनट ही सरी छे एवं यहाँ सही तो आमे आरंभ करुँछु आपनों को सुनें दूँछु कितनी पुरुना हिंदी चलचित्र रगिता

आज मौसम बड़ा बेईमान है बंधु, आज मौसम बहुत ही इमती पागो दीछी बाहरे, जो पागो हमको कन्फ्यूज करुची कि हमें एक्चुअली करिबा कौन दरकार। तेणु सबुठ फर्स्ट तो निहाति भावरे सेफ्टी, तेणु सेफ्टी को ध्यान दियंतु, निज सहित अत्यावश्यक सामग्री जहाँ बर्षा दिने आपन को दरकार ही दरकार से सब।

0: ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଥୀ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକକୁ। ଡିପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ। ଆଜି କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ରିୟତମା। ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ନିଜ ପ୍ରିୟତମା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ଭିଜିଯିବାକୁ ମନ କହେ। ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ତା ସହିତ ଶୁଣେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଗୀତ। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଛି କିଛି ଆଜି କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଲସିଲା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ପରେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକକୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर

0: भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाए।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को डीपी अच्छे आपण सहित सो आरंभ हो जाए आज चर्चा रही।

ତେଣୁକରି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟପିକ୍ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ମତାମତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏସଏମଏସ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସଏମଏସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 0949596321 ନମ୍ବରରେ FMRC टाइप करी गोटे स्पेस दे आपण निज मतामत आउटे स्पेस दे आपण ना और ठिकना स्पष्ट भाव लिखि पठाइबा पड़ो। आप व्हाट्सएप करेंगे व्हाट्सएप करने आप 8895254200 नंबर रे आमको आपण मतामत गोटे स्पेस दे आपण ना और ठिकना स्पष्ट भाव लिखि पठाई पार्टी।

부자 부원이스루 पूजा लिखिछंती गुड आफ्टरनून भाई आपण को मध्यम गुड आफ्टरनून लिखिछंती बापा मां को उपदेश हेउची जीवन रो सबुठारु मूल्यवान शिक्षा से माने निज अनुभव स्नेह आ भल पाइबा हमकु देई बाट देखै थांती अनेक समय रे से मानको कथा सेई समय रे बुझा पड़ेनी किंतु समय सहित ताहारा महत्व अनुभव हे जाय से मानको परामर्श को सम्मान करि चलले जीवन रो अनेक भूल रो रक्षा पाइबा सहित सफलता रो रास्ता मध्य सहज हो जीव बहुत ही सुंदर कथा लिखिछंती पूजा भुवनेश्वर रु ते सतरे साथी जेते बेले बापा मांको उपदेश आमे मानी थाउ सेते बेले ठीक समय रे सही समय रे हमकु हो त बुझा पड़ी न थाए किंतु परवर्ती समय रे आमे जेते बेले भविष्यत रे जाई के आमे चिंता करू कि ई उपदेश आमे बापा मांकर हुए तो जदि न मानि थांते ताले केते बड़ असुविधा रे पड़ी जाय थांते तनु सबु बेले बापा मांको उपदेश मानिबा उचित एवं आपण जदि कोनोसी भी असुविधा रे पड़ि छेंती ताले बापा मांको ठारु उपदेश निजे निज आडो मागी नियंतु बा जदि से माने जानी पारु छेंती आपण कोनोसी असुविधा रे अछेंती ताले तांको उपदेश को मानि आगु को चलिले आपणको जीवन रे प्रत्येकटी प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन चुटकी रे बाहर जीव बहुत बहुत धन्यवाद पूजा भुवनेश्वर मेसेज करते ले।

0: ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा एक रिपोर्ट
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब

0: नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. It's committed

0: commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagements.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिंस।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस

के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा

सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह

0: हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ,

0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो
0: जी
1: विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक

0: जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
4: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल
8: सोए रेडियो।

0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगोई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में

0: बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं तो मैं भाई। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,

आखिर आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। टाइम वर्तमान 3:30। वर्तमान कार्यक्रम आरंभ हो सारी मो देश कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आपण को पुणी थे छोटिया सचेतन वार्ता। जदि बाहर कौटी जाती भाव निज सेफ्टी प्रति विशेष भाव ध्यान दिंतु। वर्षा भी किसी स्थान में कंटिन्यू रही तेणुक निज सहित छता एवं रेनकोट क्यारि करंतु एवं खाल ढीप रास्ता देखी गाड़ी चलाइबाकु विशेष भाव अनुरोध। निजे सुरक्षित रहिबा सहित अन्य मानकु मध्य सुरक्षित रखंतु। तबे बंधु कार्यक्रम वर्तमान आरंभ हो जाइछि मो देश। आज मो देश रे आमे कथा हवा आम देश केमिति आम पई आम परिचय साजिछि। आम देश आम परिचय एक कथाटी केवल केतोटी शब्द किंबा गोटे वाक्य नुहे, यहा प्रत्येक भारतीय हृदय स्पंदन। आम देश भारत जहाँ विश्व रे विविधतार एकता पाई बेस परिचित ताहा अन्य कोठी मिलिबा असंभव। कथा तो आगुकु एमती जारी रहिबो। एबे सुनिनेबा ए सुंदर गीतटी।

बड़ी अजीब है ये पानी। ये पानी जो है ना, उसकी अहमियत बड़ी कमाल की होती है। अगर दरिया में हो तो गहराई छुपाती है, और आंखों में हो तो दिल के राज। हेले आमे आउ कौन से सीक्रेट न रखी आरंभ करो जो आज रो सुरीला आफ्टरनून को। जुहार आदाब, सत श्री अकाल साथी। ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। म्यूजिक मित्र अनु रहिछे आज आपनका सह।

तेरी मेरी कहानी से ज्यादा, किससे से तेरी मेरी कहानी से ज्यादा, पानी में है क्या और भी पानी से ज्यादा।

0: हेलो हेलो
1: पापा नमस्कार, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या, नमस्कार। के कहुचंती, कोठु कहुचंती?
1: आवाज कहुचो पापा।
0: बहुत दिन परे कॉल करो।
1: आपण बहुत दिन परे आछंती?
0: अच्छा, मु बहुत दिन परे आछी, करेक्ट।
1: आठ दस दिन बाद ना आछंती।
0: तो केमती अछ आवाज? भला अछ?
1: टिके ठंडा टिके हे छी।
0: अच्छा, वर्षा जको
1: काल तो वर्षा लागली, आज भी एपर्यंत वर्षा चालली।
0: अच्छा, तो बर्षार मजा नौ नाई? थंडा चलो,
1: छुट्टी रूम रे पेंट सर्ट खोल
0: ओके, बहुत बढ़िया। तबे आज टॉपिक ऊपर कोन कहबो?
1: हां, घरे भी दीटा पोखर अच्छी, बड़ा बड़ा पोखर अच्छी, पति ए टाइम रे पे नाच जान छोड़ा।
0: माने घरे दीटा पोखर अच्छी ना गां रे दीटा पोखर?
1: गां रे, सॉरी, बड़ा बड़ा पोखर अच्छी। पोखरी हुड़ा रे भी पूरा बंध माटी बंध भल रखी, गोटे पांच फुट छाड़ी कदमी सब लगे कदमी फल पति यही टाइम रे जहाँ भी छड़ा बढ़ी गला भी आम अक्टोबर डिसेम्बर मसरे भी सब बंधु बांधव जाए, रिलेटिव घर जाए, गाँव रही मागिले खुशी दू बिक्री अवश्य बिक्री हो जाए।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जितने पिला दिन में पोखरी कूल खेला खेली कि
1: भाउज मैंने कपड़ा फपड़ा साड़ी फाड़ी सफा करेंगे आज पोखरी भी सफा सफी करूँ। बड़ फैमिली ट्यूबवेल मारिक टैप मारिक पोखरी जहाँ हम आगे भी बासन बासन सब मजा था पोखरी जनासा साबुन भी
0: निश्चित
1: गोरु गाई माकड़ भी
0: पशे
1: जो अच्छी टिके टिके पिता शाग अच्छी पिता शाग खाइले बहुत मानते झीता बहुत हितकारी बहुत मानते जो पांच टिके सुखी आस पोखरी हुड़ा बहुत पिता शाग बहुत हो जाए घर आई पिता शाग करती आलु चुन चुन काटिक पिता शाग भाई बढ़िया टेस्ट लगे।
0: अरे तुम तो पूरा रेसीपी ही कहीदेल समस्ते ट्राए करे देखिए कंटाक्ट आस तो या परे आभास को सहित समस्त कनेक्ट हेबे और पिता साग बिक्री हेबो बढ़िया नहीं बढ़िया बढ़िया। ओके रही आवाज
1: गीत
0: बजे गीत हाँ निश्चय निश्चय बाजिब सब गीत बाजिब
1: आरम्भ कले मुझे
0: ओके ओके ओके ओके रही आवाज बाय बाय
1: नमस्कार।
0: तो ये थिले आभास सिंह टाटा स्टील प्लांट रु जमती कि से कहिले जे तांकर पोखरी माने इमती रही कौन कौन सब करती पूरा डिटेलिंग रे कहिले। तो आग को आपण माने मध्ये हम सहित कनेक्ट हे परिबे, डायल करंतु 0671230315 एवं निजो गां पोखरी रो जड़ित ता सहित जदि किछि स्मृति रहिछि तेबे हम सहित शेयर कर परिबे। तो देखने किए कर कॉल हेलो
2: जय जगन्नाथ। नमस्कार
0: नमस्कार, राजेश भाई जगत सिंहपुर कहते
2: खाली राजेश भाई कौन रेडियो किंग भूतपूर्व कलर राजेश नायक
0: बापरे बड़ बड़ सब मान उपाधि लगे आम टे पचर पड़ जा ओके अपडेट
2: हो गले।

0: 꼭 그런 후에 자꾸 농그러져 젖는 것들아? 자꾸 그래 우리 애들도 농가를 자고 자꾸 농 상가래 공이 자꾸 농 상가래 왔어 이거 더 어찌 뭐또 뭐라 어머니
1: 아차 तो सेटा बहुत स्पिरिचुअल नहीं भल लगे तो ओके से बुढ़ीबा कथा टा माने मने रहिला सुणी कि ना जे जा हो भगवान रक्षा करछन पढ़ना बेले मु बुढ़ी
0: गेल तापर तोरा सिखि
1: गन अरे अरे बढ़िया बढ़िया तो गोटे धक्का लागिले मनुष्य सिखे ना तो एमते हेला पर ही सिखि जाई छ आ ओके बहुत बढ़िया लागिला तुम से तो कथा है कि रहिली बाय बाय
0: आज्ञा नमस्ते
1: नमस्कार तो एथिले सोनाली निजो एक्सपीरियंस शेयर करथिले ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସେୟାର କଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ

0: আচ্ছা তোমার সব রিপোর্ট দেখেলো? এইচআইভি টেস্ট হয়েছে?
1: নাই ডাক্তার বাবু, সেইটা কোন নিহাতি জরুরি?
2: আজ্ঞা হ্যাঁ, গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মহিলা নিজের এইচআইভি পরীক্ষা করে নেই অজনা আতঙ্কটু দূরেই রুহন্তু।
3: যদি রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাহলে উপযুক্ত চিকিৎসা জরিয়ারে নিজে তথা শিশু উভয় এইডস ভলি মারাত্মক রোগকু প্রতিরোধ করন্তু।
4: মনে রাখন্তু, এই পরীক্ষা এবং চিকিৎসা নিকটস্থ সরকারি ডাক্তারখানায় থিবা আইসিটিসি কেন্দ্রে মাগণারে উপলব্ধ।
3: অধিক জানিবা পাই টোল ফ্রি নম্বর 1097 সহ যোগাযোগ করন্তু।
4: ওড়িশা রাজ্য এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতি দ্বারা জনহিতরে জারি।
5: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
6: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
5: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
6: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
5: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
7: जीएसटी काउंसिल टैक्स को आहुरी सरल कर देछि। सरकार सीमेंट उपरे जीएसटी दर 28% रु ह्रास करी 18% कर देछन्ते। ट्याक्स ह्रास द्वारा घरोई एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट उपरे चाप कम हेबार संभावना रहिछि। एहिपरि मार्बल एवं ट्राबोटिन ब्लॉक उपरे टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% कर दिया जायछि। जेबे कि ग्रानाइट ब्लॉक उपरे पूर्वरु 12% तुलनारे एबे केवल 5% जीएसटी लागिबो। एहा सहित बाली चुनर ईटा ओ पत्थर काम उपरे मध्य टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% कर दिया जायछि।

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक वर्तमान चलंतु जानिबा आज प्रसारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित किछि सूचना।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

0: स्तंभ वेद।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसंतकुंज क्षेत्रस्य नेल्सन मंडेला मार्गेण सह द्वारिकादूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 शत ए राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामी दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत कालः अग्रे गमिष्यति। आगामी दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देश अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16 तमे चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को सुनती आपण म्यूजिक मित्र अनुसह दिल से दिल तक आपण आमको सुनी न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे भी समय वर्तमान संध्या 6:30 आरंभ करूछु भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना

हे प्रभु, मु त निमित्त मात्र, तुम्हें ही मोर हर्ताकर्ता दैव विधाता, तुम्हें ही सृष्टिकर्ता पुणि विनाशकारी मध्य। तेणु सठिक दिग्दर्शन तुम्हें ही दियो प्रभु, एमती मते सबुबले

कभी कोई शाम तुम ऐसी भी बिताना, कभी कोई शाम तुम ऐसी भी बिताना कि आना पास हमारे और वक्त भूल जाना। इसलिए वक्त को भूल जाते हैं और ऐसे ही सुनते रहिए 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक को, दिल से दिल तक।

सुन चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकु दिल से दिल तक म्यूजिक मित्रों रही छे जे आपनको सह संध्या सर रे तबे कई बार कथा हला जे ई जो स्ट्रेसफुल लाइफ केते बेले पे हमको ना बसे दोची ना सुवाई दोची सब बेले जहाको देख जेते बेले देख इवन छोटो छोटो पिला मानको मध्य रे बी रहुचे स्ट्रेस आउ ए स्ट्रेस को रिलीफ करे किसी एभली कथा जहाँकि मुहरे स्माइल आनी दिए नुह कि जमती कि जोक्स ये जो मजाड़िया कथा सब शुणा को क्या भल न लगे समस्त भल लगे तेणु आज दिन टी सेलिब्रेट करा जाउची अंतर्जातीय मजा कथा दिवस माने इंटरनेशनल जोक डे हिसाब रे तेणु किसी करूँ न करूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 300

0: 27 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा

0: साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा

0: शिक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

कभी बेपनाह बरसी कभी गुमसी, कभी बेपनाह बरसी कभी गुमसी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुमसी है। तुम पर ये वर्षा तुम पर मन पकई दिए से सबू कथा जहा गला आषाढ़ घटी से गला आषाढ़ कथा मन पकई दिए ए वर्षा ए मेघ ए बिजुली तम सह देखा हबर से अवसर मुहूर्त भूली जे पारे ना से सबू मुहूर्त मन भितरे अभुला स्मृति है साईदा। आउ ए अभुला स्मृति को शेयर करुचे आपणक सह म्यूजिक मित्र अनु ओनली ऑन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का दिल से दिल तक।

मौसमी इश्क है तू एक कहानी बन के आ, मौसमी इश्क है तू एक कहानी बन के आ, मेरे रूह को भिगो दे, मेरी रूह को भिगो दे जो तू वो पानी बन के आ। मन को भिजाई देला बढ़िया बरसा थिला से आषाढ़ आउ आम कहानी लिखा जाऊ थला पानी रो।

पानी की हर बूंद में वो आए याद बहुत। इस सुहाने मौसम में साथ नहीं है कोई, इस सुहाने मौसम में साथ नहीं है कोई, बादलों के साथ इन आंखों से पानी बहा बहुत।

बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है, बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है, जिंदगी की बारिश में हर पल निखरना जरूरी है। इसलिए निखरिए बिखरिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन ऐसे ही सुनते रहिए हमें 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक में, जिसको आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR आपके माध्यम से भी दिल से दिल तक।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: आजिर शेष समाचार मुख्यांश सह मुं सुभाष चंद्र शतपथी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतारे राज्य क्याबिनेटर बैठक अनुष्ठित होईछि। लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षर अनुष्ठित बैठक में विभिन्न विभाग 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य केजी पिजी पर्यंत समस्त छात्र छात्री को मागणा शिक्षा प्रदान पर क्याबिनेट निष्पत्ति ग्रहण कर राज्य नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री मध्याह्न भोजन प्रदान आसंता 5 वर्ष में एथपाई 4224 कोटि टंका खर्च कर। राजधानी जयदेव विहार नंदनकानन रास्ता को 8 लेन क्याबिनेट्रे निष्पत्ति। महात्मा गांधी नरेगा योजना बदल में आज देशव्यापी भिभीजी रामजी योजना लागू करा। ओडिशार मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन अध्यक्षतारे स्वीकृतिप्राप्त राजनैतिक दलगुड़िकर प्रतिनिधि एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में स्वतंत्र भोटर संशोधन कार्यक्रम अग्रगति संपर्क में समीक्षा कर। आसंता 5 तारीख में चिट्ठा भोटर तालिका प्रकाश पाइबे बैठक जमापड़। चलित शिक्षाबर्षर स्नातक पाठ्यक्रम नामलेखापाई आसंताकाली प्रकाश पाइबा द्वितीय मेधा तालिका को स्थगित रखाई। नूआदिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विभिन्न सड़क प्रकल्प निर्माण को केन्द्र क्याबिनेट अनुमोदन एथपाई 14,000 कोटी टंका खर्च कर। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कार्यकाल 1 वर्ष वृद्धि कले केन्द्र सरकार।

हेलो है नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ रे ए सुंदर अगणारे मुनिषी अच्छी आपण मानक सहित समस्त हृदय सुस्वागतम रिमझिम बर्षार मतुआला तान रे आसंत समस्ते भिजिबा मजिबा रेनबो अगणारे समस्ते मिसी सुंदर भावरे गुणगुणी ही गीत गाइजिबा बर्षार गीत हृदयर गीत आनंद को आपणैबा एवं दुःख को भुलिजिबा किछि मुहूर्त पाई

निजर चाली चलन व्यवहार को मार्जित करने निहाती भाव से सबको आम जीवन में व्यवहार करने चेष्टा करने दैनंदिन जीवन किछि निजर दोष खराब गुण भूल को सुधार एसबू जदि आम धीरे धीरे धीरे धीरे आपणवा ताहले देखिबे किछि दिन परे आपणकर समस्त खराब गुण सब गुडे उभे हि जायछि चली जायछि आ आपण निजको बेस मार्जित करि पारिछन्ति बेस सुंदर करि पारिछन्ति निजर कामरे बेस निजको सक्षम करि पारिछन्ति।

वेलकम बैक ट्यून करिसंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आरंभ करबा मॉर्निंग मेलोडी ए सकल को आउटिके मेलोडीस करबा आउटिके रंगारंग करबा आउटिके झुमिबा वर्षा रा छिप छिप छिप छिप सप्तरे नुआ नुआ वर्षा हेले काहे के केचनी भारी आनंद लागे आ ई जो छिप छिप वर्षा माटी को ओदा करूची वृक्षलता को ओदा करूची एवं आम मन को मध्य काहेके के जाने ठंडा ठंडा करि दउची ओदा ओदा करि दउची से ओदा ओदा मतुआला मनलाखी परिवेश रे रेनबो अगणा रे एबे मॉर्निंग मेलोडी रा आसर तबे विधातांकर अपूर्व सृष्टि रे केते केते प्रकारर सौंदर्य कोठिने केमिते भरी रहिछे ताहा वास्तवरे आश्चर्यजनक आज मु कहिबि पाउंजीर कथा छम छम शब्दर सुरे सुरे पाउंजीर शब्दरे किए हजि न जाइछि कहिले किए अन्यमनस्क न होइछि कहिले पादरे पाउंजी आउ धारे अलता नारी सौंदर्यको बहुगुणित करिथाए रुमझुम रुमझुम शब्द सत जेमिति सकारात्मक भावना को बहन करे से केते मुहूर्त पाई

तेबे पाउंजे कथा सुनु सुनु सुंदर सुंदर मीठा मीठा गीत सुनु सुनु केतेबेले जे समय पळे गला मु त जानि परलिनि तेबे पाउंजेर गोटे नियारा आकर्षण रहिछि समस्तंक हृदयरे समस्तंक मनरे नारीटिए जेतेबेले सुंदर भावरे सजे हि पादरे पाउंजे पिंधि दिए आउ अळता धारे पिंधि दिए सेतेबेले पादर सौंदर्य बढ़िबा सहित घरे लक्ष्मी बास करंति बोली विश्वास रहिछि भलरे मंदरे जानी जातरारे पूजा पार्वणरे नारीटी अलता पिंधि थाए से नाली नाली अलता पिंधार दुई पाद जेतेबेले घर भितरकु प्रवेश करे भारी आनंद लागे भारी सकारात्मक भावना मध्य सृष्टि हुए तेबे पाउंजीर रुमझुम शब्द पाउंजीर छमछम शब्द सतरे समस्तंकु आनमना करे नारीटी आसुची बोली आभास मिली जाए जणा पड़ी जाए।

0: कम थिबा बेले बाहर को जांतु बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु हालुका रंगर ढिला पोशाक छत्ता और जोता व्यवहार करंतु खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही अधिक दूर चालंतु नाही मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु
1: अंशघातर प्रतिकार गुडिक हेउछि रोगी को खोला और थंडा जगह को नी ओआरएस किंवा चीनी लुणा शरबत अथवा साधा पानी पियंतु पोशाक गुडिक यथासंभव खोली दियंतु मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु रोगी को पंखा कूलर किंवा एसी पवन सुवाई दियंतु अवस्था रे उन्नति।

0: खोली दियंतु मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु रोगी को पंखा कूलर किमा एसी पवन रे सुवाई दियंतु अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किमा एम्बुलेंस डाकंतु
1: वयस्क तथा अस्वस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलां को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए
0: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सौ चलेचे किछि कथा किछि गीतरे आउ मु अछि मो नेली सा आपण मनन को साथिरे मीठा कथार सबुठारु बड विशेषता कोन हेउची जानिछंती एटा सीधा हृदय को छुंजे आजकाली आमे फोन रे बहुत कथा हो जो मेसेज करू जो किबा सामने सामने बसे आमे बहुत सारा कथा हो जो किंतु स्नेहर कथा कहबा पई खूब कम समय मिलुची घरे हेउ कि ऑफिस रे बंधु बांधव को भीतर हेउ अपा अजना लोक मन को सह आमो व्यवहार आ हम कथावार्ता कहबार शैली ही हमर प्रकृत परिचय तेणु आमे एमिति कहबा जहा अन्य को कष्ट दबनी कारण पते मीठा कथा संपर्क को सुंदर करने मनीषर व्यक्तित्व को आउ टिके सुंदर करनी है

0: ତେବେ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାରେ କଥା
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି ଅନକହୀ ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେଁ ନୟେ ଭାରତ କି ମହିନେ କେ ଆଖରୀ ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତିଜାର ମଲ୍ୟାଚଲ କେ ଆଞ୍ଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ ହୋତୀ ହେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ ତୋ ସୁନିଏ ଇସ୍ ମହିନେ 28 ଜୁନ ସୁବହ 11 ବଜେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କେ ସଭି ଚ୍ୟାନେଲୋଁ ଔର ପ୍ରସାର ଭାରତୀ କେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେଭ୍ସ ପର ଇସକେ ଅତିରିକ୍ତ ଆକାଶବାଣୀ ଔର ଦୂରଦର୍ଶନ କେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଔର ପ୍ରସାର ଭାରତୀ କେ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଔର ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେଭ୍ସ ପର ସଜୀବ ପ୍ରସାରଣ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ତୋ ୟାଦ ରଖେ ରବିବାର 28 ଜୁନ ସୁବହ 11 ବଜେ ମନ୍ କି ବାତ୍
2: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
3: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
2: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
3: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
2: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुनंतु प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।

0: और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ
1: इतिहास की भूगोल की साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ तो अजीत जी इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं
0: विमलेश जी आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला
0: विमलेश जी वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ
1: जी
0: जरा सोचिए तो क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता
1: जी सचमुच कोयला लोहा तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए तो श्रोताओ इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की लेकिन अजीत जी पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं
0: जी ये तो हमें जानना ही चाहिए देखिए खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी।
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है
1: जी श्रोताओ खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं
0: जी तो विमलेश जी ये तो हुई खनिज की बात अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे कोयले की ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है
0: जी हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं ये सब कुछ तो हम जानते हैं लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है
1: अजीत जी एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ
0: जी जी
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है
0: जी ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई लेकिन ऐसा कैसे जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे
1: जी श्रोताओं आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे चारों ओर जंगल ही जंगल थे दलदली भूमि विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे
0: जी श्रोताओं भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए
1: जी
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही
1: समय बीतता गया ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया
0: जी विमलेश जी इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं श्रोताओं दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है
1: जी बिल्कुल सही पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है
0: विमलेश जी ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है
1: जी तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं तो अजीत जी रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है
0: जी विमलेश जी बिल्कुल सही इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा।